कायेन वाचाय वचेरसा वा उत्थे कुकम्मं पकतं मयायं कुत्थो पदिकानं त्वचयन्तं कालन्दरे संवरितुं वा पुत्थे।